0: अंदर खोरदा।
1: यस डैडी।
0: अपनी भाषा में बोलो।
1: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।
2: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
3: नमस्ते।
2: जय हिंद ओ पिताजी।
3: जय हिंद।
2: नमस्ते नमस्ते है सबको।
4: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: के बुला तुम ही गिरने आई है।
1: बहुत अच्छे
0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।
1: वाह बेटा
0: की किरने आई है खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: नमस्ते।
0: जय हिंद ओ पिताजी
1: जय हिंद।
0: नमस्ते नमस्ते है सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: गुलजार नार सिंगार तरुण खूब नटली अहो गुलजार नार सिंगार करुण खूब नटली
1: चले चमक चमक।

0: रेडिओ विश्वास टाइम चेक टाइम चेक।
1: दुपारचा एक वाजलाय आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
2: दिस आर इज ब्रॉट यू बाय विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक,
3: संचयात समृद्धी।
4: विश्वास बँकेची एटीएम सुविधा उपलब्ध, विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक, संचयात समृद्धी।
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
6: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही। त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा। रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज।
7: दिल्ली पुकारा इस प्रोग्राम में सभी श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप? हाल कैसा है जनाब का? आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे मधुर सुहाने पुराने गीत जो हमेशा हम सुनते हैं रेडियो विश्वास के जरिए। आज सुनेंगे कुछ ऐसी फिल्मों के गीत और जान लेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनकी फिल्में बड़ी सराही गई। आम आदमी की जिंदगी इन फिल्मों के जरिए दिखाई गई थी। ना इन फिल्मों का हीरो कोई डैशिंग एंग्री यंग मैन था, ना फिल्मों में कुछ हाथापाई के सीन थे, ना कुछ चमक दमक थी, और यही वजह थी कि फिल्में ये बड़ी ही पसंद की गई। जी हाँ, वो हीरो थे अमोल पालेकर। उनकी फिल्मों के बारे में सुनेंगे, कुछ चुनिंदा गीत भी सुनेंगे आज के प्रोग्राम में।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना अमित कुमार और आशा भोसले ने गाया, योगेश का लिखा गीत, राजेश रोशन थे संगीतकार और फिल्म थी बातों बातों में। अमोल पालेकर ने अभिनेता बनने से पहले निर्देशन के रूप में इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। मराठी नाटक में वो काम भी करते थे और ये नाटक देखने के लिए एक बार बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी भी आए थे। उनकी अदाकारी देखकर सबसे पहले उन्हें रोल मिला रजनीगंधा इस फिल्म में, जिसे निर्देशित किया था बासु चटर्जी ने। ये फिल्म बड़ी ही सफल हो गई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग किस्म का हीरो मिल गया, अमोल पालेकर।

दिल्ली पुकारा आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर। आपने ट्यून किया है 90.8। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म घरौंदा का एक गीत जो गाया था भूपेंद्र ने, गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे जयदेव। आज हम सुन रहे हैं मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा मधुर गीत। हिंदी फिल्में ज़्यादातर एक्शन फिल्में होती थी जो सच्चाई से, रियलिटी से बड़ी ही दूर होती थी। तभी अमोल जी जैसे हीरो लोगों को अपना लगने लगे, क्योंकि एक नौकरी की तलाश में भटकने वाला, बस में आने जाने वाला, सपने देखने वाला वो एक नायक था जो आम आदमी का रूप था, वास्तव चेहरा था। जरा सा भोला शर्मीला लड़का जो पर्दे पर हीरो हीरोइन से नज़र भी नहीं मिला सकता, और पर्दे पर हीरो हीरोइन को देखकर उनकी जगह खुद को और अपनी प्रेमिका को देखता था, उसमें ही खो जाता था। ऑफिस में अपने बॉस से डरता भी था, कभी प्रेमिका

फिल्म भूमिका का गीत आपने सुना भूपेंद्र और प्रीति सागर की आवाज में। गीतकार थे मजरू, संगीतकार थे वनराज भाटिया। दोस्तों आज सुन रहे हैं अमोल पालेकर जी के फिल्मों से कुछ गीत। अमोल पालेकर जी की फिल्में कॉमेडी थी, हास्यरस बरसाती थी। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया। उनका नाम सुनते ही दर्शकों को याद आता है फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा का चेहरा, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए डबल रोल का सहारा लेकर लड़की के पिता को बेवकूफ बनाता है। उनका अभिनय देखकर दर्शक लोटपोट हो जाते थे। संजीदा अभिनय के साथ कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने का काम अमोल पालेकर ने खूब किया।

हेमलता और यशुदास की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म चित्तौर का गीत। गीतकार थे रविंद्र जैन और संगीतकार भी थे रविंद्र जैन। सिनेमा में आने से पहले अमोल जी बैंक में नौकरी किया करते थे, बहुत अच्छे पेंटर भी थे। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने निर्देशन के नाते बड़ी फिल्में बनाई। मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम सारी भाषाओं की फिल्मों में अभिनय भी किया। नारी की भावनात्मक दुनिया, विविध पहलुओं की खोज उनके फिल्मों के मुख्य विषय रहे। आकृत इस फिल्म में रूही अपनी मालकिन के खिलाफ विद्रोह करती है। दूसर फिल्म में एक माँ जो अल्जाइमर से पीड़ित है। पहली की नायिका एक प्रेमी को स्वीकार करती है जो जानती है कि वो उसका पति नहीं है। मराठी की कई सारी क्लासिक कलाकृतियों पर आधारित फिल्में भी उन्होंने बनाई। कई सामाजिक समस्याएं मुद्दों पर आधारित कलाकृतियां बनाकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया फिल्म बातों बातों में से, जो लिखा था अमित खन्ना ने, संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। अमोल पालेकर जी को कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। विश्व में वर्ष की शीर्ष 10 फिल्मों में उनकी फिल्मों को चुना गया, विश्व फिल्म फेस्टिवल में चुना गया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विषयों पर उन्होंने फिल्मों द्वारा पर्दे पर लाया और ये साबित किया कि फिल्में समाज का आईना होती है या फिर फिल्में सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं होती।

0: यशुदास और हिमलता ने गाया गाना अपने सुना फिल्म चिच्चोर से लिखा था रविंद्र जैन ने, संगीत से भी उन्होंने ही सजाया था। कला फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी अमोल पालेकर ने शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू किया, महाराष्ट्र के फिल्म संस्कृति को बढ़ावा दिया। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में जूरी सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: रेडिओ विश्वास टाइम चेक टाइम चेक।
1: रात्रीचे 10 वाजले आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 FM, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
2: दिस आर इज ब्रॉट यू बाय विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक,
1: संचयात समृद्धी।
3: आता विश्वास बँकेच्या मोबाईल ऍप मार्फत इंटर ब्रांच ट्रान्झॅक्शन आणि नेट सुविधा अर्थातच NEFT उपलब्ध। ग्राहकांनी ऍप रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म नजीकच्या शाखेत भरून सदर सुविधेचा जरूर लाभ घ्यावा।
4: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
3: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही। त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा। रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज।
5: दिल्ली पुकारा इस प्रोग्राम में सभी श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप? हाल कैसा है जनाब का? आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे मधुर सुहाने पुराने गीत जो हमेशा हम सुनते हैं रेडियो विश्वास के जरिए। आज सुनेंगे कुछ ऐसी फिल्मों के गीत और जान लेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनकी फिल्में बड़ी सराही गई। आम आदमी की जिंदगी इन फिल्मों के जरिए दिखाई गई थी। ना इन फिल्मों का हीरो कोई डैशिंग एंग्री यंग मैन था, ना फिल्मों में कुछ हाथापाई के सीन थे, ना कुछ चमक दमक थी, और यही वजह थी कि फिल्में ये बड़ी ही पसंद की गई। जी हाँ, वो हीरो थे अमोल पालेकर। उनकी फिल्मों के बारे में सुनेंगे, कुछ चुनिंदा गीत भी सुनेंगे आज के प्रोग्राम में।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना अमित कुमार और आशा भोसले ने गाया, योगेश का लिखा गीत, राजेश रोशन थे संगीतकार और फिल्म थी बातों बातों में। अमोल पालेकर ने अभिनेता बनने से पहले निर्देशन के रूप में इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। मराठी नाटक में वो काम भी करते थे और ये नाटक देखने के लिए एक बार बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी भी आए थे। उनकी अदाकारी देखकर सबसे पहले उन्हें रोल मिला रजनीगंधा इस फिल्म में, जिसे निर्देशित किया था बासु चटर्जी ने। ये फिल्म बड़ी ही सफल हो गई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग किस्म का हीरो मिल गया, अमोल पालेकर।

दिल्ली पुकारा आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर, आपने ट्यून किया है 90.8। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म घरौंदा का एक गीत जो गाया था भूपेंद्र ने, गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे जयदेव। आज हम सुन रहे हैं मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा मधुर गीत। हिंदी फिल्में ज़्यादातर एक्शन फिल्में होती थी जो सच्चाई से रियलिटी से बड़ी ही दूर होती थी, तभी अमोल जी जैसे हीरो लोगों को अपना लगने लगे, क्योंकि एक नौकरी की तलाश में भटकने वाला, बस में आने जाने वाला, सपने देखने वाला वो एक नायक था जो आम आदमी का रूप था, वास्तव चेहरा था, जरा सा भोला शर्मीला लड़का जो पर्दे पर हीरो हीरोइन से नज़र भी नहीं मिला सकता और पर्दे पर हीरो हीरोइन को देखकर उनकी जगह खुद को और अपनी प्रेमिका को देखता था, उसमें ही खो जाता था, ऑफिस में अपने बॉस से डरता भी था, कभी

फिल्म भूमिका का गीत आपने सुना भूपेंद्र और प्रीति सागर की आवाज में। गीतकार थे मजरू, संगीतकार थे वनराज भाटिया। दोस्तों आज सुन रहे हैं अमोल पालेकर जी के फिल्मों से कुछ गीत। अमोल पालेकर जी की फिल्में कॉमेडी थी, हास्यरस बरसाती थी। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया। उनका नाम सुनते ही दर्शकों को याद आता है फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा का चेहरा, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए डबल रोल का सहारा लेकर लड़की के पिता को बेवकूफ बनाता है। उनका अभिनय देखकर दर्शक लोटपोट हो जाते थे। संजीदा अभिनय के साथ कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने का काम अमोल पालेकर ने खूब किया।

हेमलता और यशुदास की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म चित्चोर का गीत। गीतकार थे रविंद्र जैन और संगीतकार भी थे रविंद्र जैन। सिनेमा में आने से पहले अमोल जी बैंक में नौकरी किया करते थे, बहुत अच्छे पेंटर भी थे। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने निर्देशन के नाते बड़ी फिल्में बनाई। मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम सारी भाषाओं की फिल्मों में अभिनय भी किया। नारी की भावनात्मक दुनिया, विविध पहलुओं की खोज उनके फिल्मों के मुख्य विषय रहे। आकृत इस फिल्म में रूही अपनी मालकिन के खिलाफ विद्रोह करती है। दूसर फिल्म में एक माँ जो अल्जाइमर से पीड़ित है। पहली की नायिका एक प्रेमी को स्वीकार करती है जो जानती है कि वो उसका पति नहीं है। मराठी की कई सारी क्लासिक कलाकृतियों पर आधारित फिल्में भी उन्होंने बनाई। कई सामाजिक समस्याएं मुद्दों पर आधारित कलाकृतियां बनाकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया फिल्म बातों बातों में से, जो लिखा था अमित खन्ना ने, संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। अमोल पालेकर जी को कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। विश्व में वर्ष की शीर्ष 10 फिल्मों में उनकी फिल्मों को चुना गया, विश्व फिल्म फेस्टिवल में चुना गया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विषयों पर उन्होंने फिल्मों द्वारा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विषयों को उन्होंने फिल्मों द्वारा पर्दे पर लाया और ये साबित किया कि फिल्में समाज का आईना होती है या फिर फिल्में सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं होती।

0: यशुदास और हिमलता ने गाया गाना अपने सुना फिल्म चिच्चोर से लिखा था रविंद्र जैन ने, संगीत से भी उन्होंने ही सजाया था। कला फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी अमोल पालेकर ने शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू किया, महाराष्ट्र के फिल्म संस्कृति को बढ़ावा दिया। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में जूरी सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: घरंदा फिल्म से आपने ये ताजा करने वाला गीत सुना, रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज में, लिखा था गुलजार ने, संगीत से सजाया था जयदेव ने। दोस्तों ये सारे गीत आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास के जरिए, आपने ट्यून किया है 90.8। आज आपने सुने बड़े ही खूबसूरत गीत जो अमोल पालेकर जी पर फिल्माए गए थे। तो दोस्तों ऐसे ही बड़े प्यारे गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और फिर से मिलेंगे अगले मंगलवार। तब तक नमस्कार।
1: खुशखबर खुशखबर खुशखबर, आरजे वर्कशॉप पुनः एकदा। काय सांगतेस, आरजे वर्कशॉप पुनः एकदा? हो, खास लोकाग्रहास्तव रेडिओ विश्वास तुमच्यासाठी घेऊन आले आहेत दिनांक 29 आणि 30 मे रोजी आरजे वर्कशॉप। तुम्ही दिलेल्या प्रतिसादामुळे आरजे वर्कशॉप ची दुसरी बॅच आम्ही घेऊन आलेलो आहोत। यामध्ये तुम्ही शिकू शकणार आहात व्हॉइस मॉड्युलेशन, डबिंग, प्रेझेंटेशन, प्रोनन्सिएशन आणि आरजे होण्यासाठीचं संपूर्ण ट्रेनिंग। यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही, प्रवेश मूल्य फक्त 2000 रुपये। अधिक माहितीसाठी संपर्क 8800 16512 किंवा 02 5322 4726 26.

रहा था, रात कच्ची पड़ रही थी। कोई पंछी पास के पेड़ से उड़ा और सुबह को लाने आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा, चल

0: तो सुना था कि ताश के पत्तों में चार दहले होते हैं।
1: हमें तो दो ही नजर आ रहे हैं। कहा है आपका जिन साथी?
2: वो भी यही है।
1: तो सामने क्यों नहीं आ रहे?
2: उनका कहना है माशूक अपने शबाब में करते हैं पर्दा हिजाब में, कैसा जमाना आया देखो कि आशिक खड़े हैं नकाब में।

सुना था वैसा ही पाया, आपको देखा तो यकीन आया, अगर फिरदौस बर्वे जमीनस, हमी अस्तो हमी अस्तो।